0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके मुल्क की फ़ौज का एक बड़ा यूनिट लेबनान में कार्रवाइयां कर रहा है। दूसरी जानब अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मंगल को भारत के दौरे के दौरान कहा कि एक माहदे के मतन पर तबादला ख्याल जारी है। ईरान की हुकूमत की जानब झुकाव रखने वाली न्यूज़ एजेंसी फारिस ने मंगल के रोज़ एक माहदे तक पहुँचने के मकसद से मुफाहमत की याददाश्त के मवाद के बारे में खबर दी है। इसमें कहा गया है कि ईरानी असासों को गैर मुंजमद करने के बारे में कतर की सालसी से पेशरफ्त हुई है, जो कि ईरान की शर्त है। जेसना नेतन्याहू ने मंगल के रोज़ लेबनान के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसराइली फ़ौजियों की बड़ी तादाद इलाके में अंदर जाकर कार्रवाई कर रही है, इलाकों पर कब्ज़ा और सिक्योरिटी जोन को मजबूत कर रही है। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान की हमायत याफ्ता लेबनानी शिया इस्लामी तंजीम हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयों में तौसीख होगी। ईरान अमरीका के साथ अपने मुज़ाकरात में लेबनान समेत तमाम इलाकों में लड़ाई के खात्मे का मुतालबा कर रहा है। ताहम मुज़ाकरात पर इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में तौसीख के मुमकिन असरात के बारे में खदशात मौजूद हैं। शुमाली कोरिया के ज़राए इब्लाग का कहना है कि मुल्की रहनुमा किम जोंग उन ने मंगल को मस्नूई ज़हानत से चलने वाले टेक्टिकल क्रूज़ मिसाइल और दीगर निज़ामों के तजुर्बे की निगरानी की है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA ने बुध के रोज़ खबर दी कि मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन और अकेडमी ऑफ डिफेंस साइंसेज ने गुज़श्ता रोज़ किम की मौजूदगी में मुतअद्दद मिसाइल निज़ामों का तजर्बा किया। KCNA के मुताबिक ये तजर्बा दीगर के अलावा टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के वारहेड और टेक्टिकल क्रूज़ मिसाइल के AI गाइडेड सिस्टम की ताकत का जायज़ा लेने के लिए किए गए थे। एजेंसी के मुताबिक टेक्टिकल क्रूज़ मिसाइल को जनूबी इलाके में एक यूनिट में नसब किया जाना है। फौजी हदबंदी लाइन भी इस इलाके में शामिल है। दावा किया गया है कि यह मिसाइल 100 किलोमीटर दूर अहदाफ पर दुरुस्त निशाना लगा सकता है। जनूबी कोरिया के ज़राए इब्लाग ने इतला दी है कि ये खदशात मौजूद हैं कि सियोल समेत मुल्की दारुलहुकूमत का ज़्यादातर इलाका मस्कूरा मिसाइल की मार की हद में आ जाएगा। एक जापानी कंपनी ने यूक्रेन में ऐसे ड्रोन का तजुर्बा किया है जो फिज़ा से ज़मीनी बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त सामने आई है जब यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करना एक चैलेंज बना हुआ है। यूक्रेन की स्टेट एमरजेंसी सर्विस का अंदाज़ा है कि मुल्क के तकरीबन 130,000 मुरबा किलोमीटर रकबे में बारूदी सुरंगें, अनफटा गोला बारूद और दीगर धमाका खेज मवाद मौजूद है। प्रो ड्रोन नामी फर्म यूक्रेनी कंपनियों के साथ मिलकर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले ड्रोन तैयार कर रही है। इसे अक्वामे मुत्तहदा की सनअती तरक्की की तंजीम से ग्रांट मिली है। कंपनी ने पीर को दारुलहुकूमत कीफ में अपना पहला तजुर्बा किया। टेस्ट के दौरान ऐसी बारूदी सुरंगें इस्तेमाल की गईं जिनके बारे में बताया गया था कि वो पहले जमा की गई थीं। कुछ को ज़मीन के ऊपर रखा गया था जबकि दीगर को तकरीबन 15 सेंटीमीटर की गहराई में दफन किया गया था। ड्रोन की कारकर्दगी जांचने के लिए मेटल डिटेक्टर से लैस ड्रोन को तकरीबन 30 सेंटीमीटर की कम बुलंदी पर उड़ाया गया। यूक्रेन में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल में दिलचस्पी बढ़ रही है। कबलज़ान रवामा मुल्क की वजारत दिफा ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए माहरीन को तरबियत दी जा रही है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापानी पार्लियामेंट ने कौमी इंटेलिजेंस ब्यूरो के क़याम के लिए कानून मंजूर कर लिया है। इस इकदाम का मकसद हुकूमत की इंटेलिजेंस सलाहियतों को मजबूत बनाना है। बुध को एवानेबाला के मुकम्मल इजलास में इस बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल की हिमायत करने वालों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल, कोमेतो, सांसेतो, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ जापान और टीम मिराई शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान, जापानी कम्युनिस्ट पार्टी, रेवा शिनसेन गुमी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर ने इसके खिलाफ वोट दिया। اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فوج کا ایک بڑا یونٹ لبنان میں کارروائیاں کر رہا ہے. دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو بھارت کے دورے کے دوران کہا کہ ایک معاہدے کے متن پر تبادلہ خیال جاری ہے. اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ ساتھ دلچسپ ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے nhk.jp/urdu.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 27 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। जापान की संसद ने राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो की स्थापना के लिए एक कानून पारित किया है। इस कदम का उद्देश्य सरकार की खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना है। यह विधेयक बुधवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में बहुमत से पारित हो गया। विधेयक का समर्थन करने वालों में सत्तारूढ़ गठबंधन की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल, कोमेतो, सांसेतो, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ जापान और टीम मिराई शामिल हैं। जापान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जापान कम्युनिस्ट पार्टी, रेवा शिनसेनगुमी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य ने इसके खिलाफ मतदान किया। कानून में यह प्रावधान है कि खुफिया ब्यूरो को मंत्रालयों से व्यापक रूप से जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का अधिकार होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रिमंडल में एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसमें संबंधित पोर्टफोलियो वाले कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिनमें मुख्य कैबिनेट सचिव और विदेश मंत्री भी शामिल हैं। मतदान से पहले बुधवार को ऊपरी सदन में हुई बहस के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओनिकी माकोतो ने विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को खुफिया क्षमताएं देना सरकार की शक्तियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया तो जनता के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक में गंभीर खामियां हैं, क्योंकि यह लोगों की निजी जानकारी और निजता के अनावश्यक उल्लंघन की चिंताओं को दूर करने में विफल है और लोकतांत्रिक नियंत्रण के बिना सरकार की शक्ति को मजबूत करता है। डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल की उशिदा मायू ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसे जापान की खुफिया क्षमताओं को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि आज जब जापान के आसपास की सुरक्षा स्थिति पहले से कहीं अधिक बहुआयामी और जटिल हो गई है, तो देश और उसके लोगों की रक्षा के लिए उचित जानकारी पर आधारित ठोस नीतियों को लागू करना सर्वोपरि है। सरकार की योजना इस ब्यूरो को इसी साल गर्मियों में शुरू करने की है। निचले और ऊपरी दोनों सदनों की समितियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक पूरक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें लोगों की निजी जानकारी और गोपनीयता का अनावश्यक रूप से उल्लंघन ना हो। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार को इस तरह से जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए जिससे राजनीतिक निष्पक्षता कमजोर हो।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश की सेना की एक बड़ी टुकड़ी लेबनान में अभियान चला रही है, जबकि अमरीका और ईरान के बीच लड़ाई समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को भारत दौरे के दौरान कहा कि समझौते के शब्दों को लेकर बातचीत जारी है। ईरान सरकार की समर्थक मीडिया संस्था फार्स न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से हुए ज्ञापन की विषय वस्तु के बारे में रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया है कि कतर की मध्यस्थता से ईरानी परिसंपत्तियों से प्रतिबंध हटाने के संबंध में प्रगति हुई है। समझौते के लिए ईरान की ये एक शर्त है। इस बीच नेतन्याहू ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लेबनान के बारे में एक पोस्ट में कहा कि बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक क्षेत्र में भीतर तक अभियान चला रहे हैं, नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं और सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि लेबनान में ईरान समर्थित शिया गुट हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान का विस्तार किया जाएगा। अमरीका के साथ वार्ता में ईरान लेबनान समेत सभी क्षेत्रों में लड़ाई खत्म करने की मांग कर रहा है, लेकिन इजरायली सैन्य अभियानों के विस्तार से वार्ता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया का कहना है कि किम जोंग उन ने मंगलवार को एआई द्वारा निर्देशित टैक्टिकल क्रूज मिसाइल और अन्य प्रणालियों का परीक्षण प्रक्षेपण देखा। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी केसीएनए ने बुधवार को बताया कि मिसाइल प्राधिकरण और रक्षा विज्ञान अकादमी ने किम की उपस्थिति में एक दिन पहले कई मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया। केसीएनए ने कहा कि ये परीक्षण टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड और टैक्टिकल क्रूज मिसाइल के एआई निर्देशित सिस्टम आदि की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए किए गए थे। उसने बताया है कि टैक्टिकल क्रूज मिसाइल को सैन्य सीमांकन रेखा वाले दक्षिणी क्षेत्र में एक टुकड़ी में तैनात किया जाएगा। केसीएनए ने दावा किया कि ये मिसाइल 100 किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर सटीकता से हमले कर सकती है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार ऐसी चिंता है कि सोल सहित राजधानी के आसपास का अधिकांश इलाका मिसाइल की मारक क्षमता के दायरे में आ जाएगा। एक जापानी कंपनी ने यूक्रेन में ऐसे ड्रोन का परीक्षण किया है जो हवा में उड़ते हुए बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है। यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में ये परीक्षण किया गया है। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा का अनुमान है कि देश की लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर भूमि में बारूदी सुरंगें, बम और अन्य विस्फोटक मौजूद हैं। प्रो ड्रोन नामक कंपनी यूक्रेनी कंपनियों के साथ मिलकर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले ड्रोन विकसित कर रही है। इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से अनुदान मिला है। कंपनी ने सोमवार को राजधानी कीव में अपना पहला परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान पहले से एकत्रित बारूदी सुरंगों का उपयोग किया गया। कुछ को जमीन के ऊपर रखा गया और अन्य को लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई में दबा दिया गया। मेटल डिटेक्टर से लैस एक ड्रोन को लगभग 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर उसकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया गया। यूक्रेन में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल में रुचि बढ़ रही है। देश के रक्षा मंत्रालय ने इस महीने बताया था कि ऐसे अभियानों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की संसद ने राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो की स्थापना के लिए एक कानून पारित किया है। इस कदम का उद्देश्य सरकार की खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना है। ये विधेयक बुधवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में बहुमत से पारित हो गया। सरकार की योजना इस ब्यूरो को इसी साल गर्मियों में शुरू करने की है। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा का ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।